0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट ब्रिजमोहन.com।
1: Get ready! GTA, are you-

0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत दे सुन के तुसी भी आनंद ले रहे हो। रेडियो उड़ान
1: फैशन आईक्यू प्रोग्राम दे सेशन नूं स्पॉन्सर कर रहे हैं फैशन आईक्यू प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आईक्यू। फैशन आईक्यू ते तुसी हैवी ब्लैंकेट, रजाई वाले ब्लैंकेट बाय वन सेकंड 25% ऑफ, फाइव बेडशीट ओनली $50 ते मेंस सेक्शन विच मेंस सूट दे उपर तुसी बाय वन सेकंड 25% ऑफ, लेडी सेक्शन दे विच लेडी सूट 25 तो लेके 50% फ्लैट ऑफ दे उपर तुसी ले सकते हो लेडी सेक्शन दे विच कुछ भी। और नाल दी नाल 4 पीस दा लगेज सेट, जे तुसी इंडिया जा रहे हो घूमने जा रहे हो तो 4 पीस दा लगेज सेट ओनली $175 दे विच। तुसी थीम वेडिंग करवाउणी है तां बेस्ट टेलर टीम इन्हां कोले इन हाउस अवेलेबल है। रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देण ते तुहानूं खूबसूरत गिफ्ट मिलेगा फैशन आईक्यू तो। तुसी पहुंचो फैशन आईक्यू दी किसी भी नेड़े वाली लोकेशन तो, गूगल कर सकते हो फैशन आईक्यू 905-453-2225 905-453-2225 फैशन आईक्यू।

सानू को जीवेखना छड़ वे तुसा भले दे हाथ लजवे सानू को जीवेखना छड़ वे असा छड़ना ताड़ा दरना असा छड़ना ताड़ा दरना ताड़

0: 7998877sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही केटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
4: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
3: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 4166182761 4166182761।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this।
6: पर हुन थोनू कार लैन ली रेडी करनगे मॉर्गेज विकिंग गिरीश शर्मा।
7: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स,
6: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं, क्लोजिंग तक देंगे पूरा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवा।

0: बहुत बढ़िया।
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 905-451-2600, 905-451-2600।
2: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों, क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
3: क्यों नहीं खाना चाहेंगे, तवा किचन दे रहा है ना। अमृतसरी कुलचा 2 for 10, बिरयानी 2 for 10, न्यूट्री कुलचा 2 for 10।
1: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
0: तवा किचन एट 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-452-2600, 905-451-2600।
1: इतना ही नहीं, ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है, $10 फॉर टू।
4: यार, लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। Honestly, Asita hun har function le Tawa Kitchen hi choose karange. Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699, 905-790-1699.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: sofastudio.ca. Thank you, ji.
1: रात हमें छड़ देनी है पर जनाब चले किथे हो
2: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
1: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
2: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है फ्रीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
3: बम्बा गया मैं जिते जावा मुंडे कहंदे बम्बा गया

चंद लाइनें ऐसी हैं जिनसे महसूस होता है कि चमनलाल चमन अपने वतन को कितना मिस कर रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हैं।

0: गया खुल गया खुल गया सच्चा सौदा गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया का शहर नकोदर विच बस स्टैंड नेड़े सिविल हस्पताल वाले रस्ते विच खुले कपड़े रेडीमेड सूट कोट पेंट सोहनिया दस्तारा कुर्ते पजामे व्याह शादिया वास्ते दाज ते वरी बनाउन वास्ते याद रखो गुरु नानक मोदी खाना नकोदर दे विच एक मोल दी दुकान जदो भी इंडिया जा रहे हो नकोदर शहर दे विच गुरु नानक मोदी खाना कपड़िया दे स्टोर ते जाओ अते पैसे बचाओ होर जानकारी वास्ते 9012791127 ते कॉल भी की जा सकती है 90127 ते कॉल भी कर सकते हो।
1: अज दे समय विच हर माँ पे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अगे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओह है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोविंद सरवर ब्रैम्पटन की नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 9054586222।

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency. जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers. इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा. ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: ए टू जी किचन कैबिनेट बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 Brampton.
3: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000
4: Toronto's number one station AM 530
5: Punjabi Versa.

आई रियली लव दिस सॉन्ग मैन। ओहो कैसा गीत है यार। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नहीं ए जान वी ए मंगदा। प्रोग्राम पंजाबी विरसा द वन एंड ओनली विद तुहाडा अपना पता ना तुहानू सिंह हरजीत है। जैसे जोग लग...

से गीत सुनने हैं भाईजान आपने, तो सितंबर 18 फ्राइडे नाइट 7 बजे लिविंग आर्ट सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि टिकटें टिकट मास्टर.ca पे अवेलेबिलिटी है, टिकट मास्टर.ca पे पहुंचो।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदिया सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदिया ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32-55-80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
3: 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

तेरी सुनिए जांदिया यारां दे दुख तोड़दी नी पुत पट के बगाना पट होनीए हुण काते फिर मुख मोड़दी सत श्री अकाल दोस्तों मैं बबल राय ते तुसी सुन रहे हो रेडियो वतनों दूर कीप लिसनिंग

0: ਜੀ ਬੱਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪ ਪੈਸੇ ਭਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੂੰ ਢੇਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛੋ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟੂੰ ਟੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ 437-264-3165 ਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੱਟੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਾ ਦੋ ਢੇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
1: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਕਿਤੇ ਨੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ
0: ਜੀ।
1: ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
0: ਜੀ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ।
1: ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਹੁਣ,
0: ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ।
1: ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਏ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ
0: ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਸ਼ ਕਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਾ ਤਾਂ $60 billion, ਉਸਮੇ ਸੇ $30 billion ਤੋ ਇਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ। ਆਪ ਪੇ ਸਿਰਫ $2 billion ਸਾਲ ਕਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਆਪਕੀ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੇ less than $70,000 ਹੈ, ਪੀਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਮ ਹੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। 30 to 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂ, ਜਿਸਕਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਕੀ ਮੰਨ ਚੱਲੇ ਫੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਫੋਰ ਹੈ, 80,000 ਆਇਆ, $40 ਤੋਂ 0% ਪੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਟ $40,000 ਹੈ ਵੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਕਬ ਤੱਕ? ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ, ਗ੍ਰੋਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਲੋਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਏਗਾ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇਂ।
1: ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਰਸ ਔਖੇ ਆ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਆ?
2: ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਸੇ 2 to 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਪੇ ਲਗਾਏ ਚਾਹੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਔਨ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਕਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਤੇ, ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਹਤੇ ਹਮਾਰੇ ਹੈਂਡਸ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੋ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਹਮ ਤੋ ਹਮਨੇ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਕੋਈ ਔਰ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਾ ਲੋ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 8 courses ਹੈ ਰੈਪੂਟਡ, ਉਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਵਹੀ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਜਿਸਮੇ ਆਪਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਿਸਮੇ ਹਮਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ
0: ਜੀ। ਜਿਤਨੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ। ਓਕੇ, ਅਭੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਜੋ ਆਪ ਕਾਗਜ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਗਰੰਟਰ, ਯੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਉਸਮੇ ਯੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਬ ਇੰਟਰਸਟਡ ਉੱਪਰ ਥਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਉੜਤੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਨਾ, ਜਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਉੜ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਉੜਤਾ ਤੀਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਥਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਥਾ $4,300, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਾ ਉਸਮੇ ਸੇ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਫਰਸਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਹੈ, ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਜ ਉਸਕਾ 2.5% ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ 7-8% ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਬੀਚ ਮੇ, ਰਾਈਟ? ਅਬ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮ ਹੈ, ਬਟ ਤਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸਮੇ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ 45,000 ਕੀ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? $25,000, ਜੋ ਰੈਸਟ $20,000 ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਹੈ,
0: 0% है एक साल तक, उसके बाद डेढ़ साल बाद आप पे करना स्टार्ट करते हैं, तब ब्याज दर 2.5% साल का है, पूरे साल का, 15 साल में लौटा सकते हैं। मजे की बात, आपकी किस्त बनेगी $200, उसमें से ब्याज कितना है, उसमें से ब्याज है $25 पूरे, मतलब 10 साल में पे कर रहे हैं आप, 200 की किस्त में $25 ही ब्याज है, बाकी सारा कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में, विदाउट क्रेडिट चेक, नो कोलैटरल, नो गारंटर, लोन मिल जाता है आपको, और बाकी आप 15 साल में उसे लौटा सकते हैं 2.5% साल का ब्याज, जो कि कुछ भी नहीं होता।
1: सो तुसी एक बार नंबर जरूर साझा करो ताकि जो लिसनर रह गए हजे एनरोलमेंट नहीं हुई, दो दिन हजे है, ग्रांट भी लै सकते हैं तो लोन भी उन्होंने मिल सकता वा, तो बिना कोई गरंटर के, बिना किसी गलबात के, बिना कोई घर तुहाडे, तुहाडे कोई कार नहीं है, घर नहीं है, तुसी पीआर हो, तुसी कुछ भी हो, तो तुसी ये लोन ते ग्रांट लैण दे हकदार हो सकते हो। ईवन जे तुसी पेंशन भी लेंदे हो तां भी, तो यह तुहाडे जिहड़ा हैगा जी ये इनकम दे विच तां नहीं काउंट हुंदा ना। इह
0: ग्रांट इज टैक्स फ्री, नंबर वन, नंबर टू लोन तो वैसे ही लोन ही है, इनकम नहीं है, तो इसलिए आप पीछे ना रहे, फंडिंग हासिल करें। सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा ज्यादा ज्यादा फायदा है, जिनकी इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे कम है, कम $70,000 से फैमिली इनकम, सिर्फ वही हमें कॉल करें, क्योंकि साफ काम है, कोई हेरा फेरी, कोई कागज नहीं हिलते इस काम में, गवर्नमेंट को कागज सबमिट हो रहे हैं, बैंक को नहीं हो रहे, तो इसलिए इनकम कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस ओनर, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कॉल करें, फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें, ग्रांट्स हासिल करें। दो दिन रह गए हैं हमारी फीस काम होने के बाद, $199 या $499 फ्लैट वन टाइम फीस है, काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है।
1: काम कितने टाइम जो होगा ना जे ग्रांट कितने टाइम जाजू?
0: 30-90 days में डायरेक्ट क्लाइंट के खाते में टू टू करके,
1: यानी 3 महीने के बीच बीच ई ग्रांट। जे चार जने फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ ते दो बच्चे आ, किन्नी ग्रांट, कल्ली ग्रांट, कल्ली ग्रांट किन्नी ग्रांट उन्होंने मिल सकती है?
0: 40,000।
1: किन्नी?
0: 40,000।
1: 40,000 ग्रांट जी वापस नहीं करनी, बंदा कितने भी बरतल पे?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, 40,000-45,000 होगा। और बाकी अगर बच्चे आपके, ऐसे नहीं कि आज ही पैदा हुए हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, देर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स।
1: अच्छा, जे जे जे पांच जना की फैमिली है, फिर उन्होंने कितनी मिलेगी ग्रांट?
0: उनकी ग्रांट हो जाती $50,000, एडिशनल ऑप्शनल $50,000 का लोन भी होता है, जो कि 0% पे है, तो इसलिए जितना ज़्यादा फैमिली साइज, जितनी कम इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा फायदा मुझे नहीं, आपको, फंडिंग आपको आ रही है सर, हमारी फीस तो फ्लैट है, हमें तो जिसको कम मिल रही वो भी उतने देता है, जिसको ज़्यादा मिल रही वो भी उतने देता है, आपका फायदा है इसमें।
1: बंदा जो दूर दरेडे बैठा वो भी उतो बैठा कितने तक यह जो है ये अपना कोल, ये अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग होंगे, ये सिर्फ अपनी प्रोविंस लिए है जी? ये
0: सिर्फ ओंटारियो में ही है, आप चाहे आज लैंड करें ओंटारियो में, न्यू इमिग्रेंट है, पीआर सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, रिफ्यूजी का केस आपका अप्रूव हो गया ओंटारियो में, कहीं भी रहते हैं हमारे क्लाइंट्स नायगरा से कर रहे हैं, क्यों, फुली ऑनलाइन कोर्सेज ने सर, कहीं भी बैठे ओंटारियो में आप क्लासेस लगाएं, स्किल हासिल करें, फंडिंग अपने अकाउंट में 30,000-100,000 हासिल करें, जिसका मेजर पोर्शन तो ग्रांट्स है, ग्रांट्स ग्रांट्स बंद हो रही है ग्रांट्स।
1: जे बंदे नूं विचे किते इंडिया जाना पैंदा जां किते होर जाना पैंदा जां किते वेकेशन ते, ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋ ਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
0: 75%।
1: ਹਾਂਜੀ
0: 75%
1: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ।
0: बिल्कुल यस, अटेंडेंस 75% आपकी मेंटेन करनी है आपने, स्किल हासिल करें।
1: तो पास ना होएगा फिर कहेंगे ग्रांट भी वापस कर, ऐसे भी हो जाता है कि?
0: देखिए जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो लोग तिगड़म लगाते हैं, जो मीठी बातें करते हैं, वो डालते हैं एकदम बकवास जगह पे, और वहां पे जो दोस्त ही आ रहे वाले, जैसे मैंने बताया ना आपको, मेरे पास कल क्लाइंट आए, उनका दोस्त उनसे 25% ग्रांट का मांग रहा था, जो बंदे को खुद को ऑफिस ही नहीं है, जो बंदे ऐसी बस टाइम पास कर रहे हैं, वो तो लोगों को स्क्रू ही करेंगे ना, और जब लोग स्क्रू होते हैं वो कहते हैं सारे सारे चोर हैं, हम अच्छे हैं, मतलब समझ रहे हो, कुछ लोगों की वजह से सबकी बदनामी होती है, तो इसलिए हम तो ठा करके कहते हैं सर टचवुड कोई फेल नहीं हुआ आज तक, 8 साल से आपकी सेवा में है, 1,000 square feet का ऑफिस है, 8 employees हैं, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं, एक टचवुड कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं, हम एक दिन में कम से कम 10 call आती तो 7 बंदों को हाथ जोड़ देते हैं काम आपका नहीं होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है उनकी, तो देयर इज नो कुंडी नो कैच, क्लासेस आपने लगानी है साल भर आसान सी फुली ऑनलाइन पढ़नी।
1: एक कोर्स यह भी दसते थे कि वो सिर्फ तुसी कोई टीचर बैठे जी हुंदा जी वो आप सेल्फ स्टडी वाला कोर्स कहड़ा सी?
0: हां जी उसकी सीट्स फुल हो गई। मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सप्लाई चेन में कोर्सेज हैं, ये 3-4 कोर्स हैं, फुली ऑनलाइन कोर्स हैं, 3 घंटे क्लास लगाएं, स्किल हासिल करें। सोखे जे ही है। अगर बताते रहो, क्लाइंट आते कहते हैं होम इंस्पेक्शन करना है, अजीब अजीब नाम लेते हैं, हमने कहा ये हमारा हैंड्स अप है, आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार है, अपनी और से काम करा लें, हम वही काम करेंगे जहां पता है हमें हमें आपका एक्सपेरिमेंट नहीं करना।
1: ऑनलाइन क्लासा लाने ने घरों बैठे ला लो, कार चो ला लो, ट्रक चो ला लो, डजंट मैटर, उन्होंने कोई केयर नहीं है जी।
0: अटेंडेंस मैंडेटरी है 75%।
1: बस तुम बाजी नंबर नोट करो, जेकर तुम भी चाहते हो कि तुम भी ये कोर्स भी नाले कर लो, ऑनलाइन क्लासेज भी ने, ग्रांट जी मेन वीडी गल जी अज का इन्हों का लाइव लोकेशन का मकसद यह है कि यह ग्रांट बंद हो जानी है, यह नहीं मिलनी है, फिर सिर्फ कला लोन रह जाना, यह रूल चेंज हो रहे हैं, चेंज होने भी सुभाविक से, बहुत सारे लोग ने जिम्मे इन्होंने दसाया कि मिसयूज भी ना कौन सा बहुत सारे लोगों ने किया जी।
0: अब क्या कहना उनके बारे में ना, बट लालच कर जाते लोग, हमें लालच है नहीं, हम साफ तरीके से साफ काम कर रहे हैं 8 साल से।
1: अठ साल तो यह थोड़ी सर्विसेज के हम तक सैकड़े नहीं हजार स्टूडेंट्स ने जोड़े वो लाह ला चुके हैं, जिंदा चेर बंदा सिख का तो वो स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट का मतलब यह नहीं कि 18 साल दो, 20 साल दो, 22 साल दो, इन्हों के कोले 65 साल के भी जिन्होंने पेंशन भी मिल रही है वो भी इन्हों के कोले कोर्सेज लैके ना तो वो ऑनलाइन क्लासेज ला रहे हैं, ना ग्रांट जी उन्होंने मिल गई कई ने, तो मैं एक फैमिली जानता नागपुर साहब वो जे कहते भैन जोड़े कि मेरे तो मैं पोते के लिए रखने से पैसे, ये याद है थोनू
0: जी।
1: हाँ सो ऐसा इदा दैमिलीज भी है ने, सो वो नाले तो क्लासेज ला रहे हैं, तो नाले उन्होंने ग्रांट भी मिल गई है, तो नाले लोन भी मिल जाना। नंबर तुम नोट कर लो 437-264-3175 से कॉल कर लियो, फिर भाजी सिर्फ 2 दिन रह गया, उस तो बाद कला लोन रह जाना, ग्रांट नहीं। ग्रांट का फायदा यही है कि एक तो तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिलनी है, प्लस तुम वापस भी नहीं करनी है, कोर्स का फिर भी तुम उही लेना, कोर्स का बाद च भी उही है, फीस भी उही है, फीस भी घट बद नहीं होनी है, सिर्फ तुम्हें यह नुकसान हो जाएगा कि ग्रांट फिर तुम्हें नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पल्यों तो देनी नहीं है, ना कॉलेज ने देनी है, तो सरकार ने देनी है, जो उन्होंने रूल चेंज हो गए फिर वो नहीं मिलनी। 437-264-3175 इन्हों का नंबर है, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो सर?
0: बस नहीं, ऑल गुड, आपने सब मेंशन कर दिया है, एंड साफ काम साफ तरीके से सही जगह से करवाएं, जिनको एक्सपीरियंस है, और जो आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थोड़े से लालच के चक्कर में, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, $3-1,00,000 की फंडिंग, मेजर पोर्शन ग्रांट्स, काम होने के बाद 200-500 हमारी फीस, आपका फायदा हाथी जितना, हमारा फायदा चीटी जितना।
1: सो नंबर 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ, ਕੱਲਾ ਲੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ 100 ਪੇਪਰ ਭਾਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ 100 ਪੇਪਰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ?
0: ਹਾਂਜੀ, फैमिली साइज पे डिपेंड है फंडिंग, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपका, और सिंगल बंदों को फायदा नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ लोन बचता है, किड्स वाले या मैरिड ओल्ड एज कपल, रिटायर्ड यंग कपल को फायदा है, और आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट, और आपकी अगर 10th कर रखी तो 10th का कुछ मार्कशीट कहीं से भी करी हो, सो कॉल करें।
1: और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आही डॉक्यूमेंट जो चाहिए है, सो ये डॉक्यूमेंट आम अपने घर च पे होंगे जी, तुम इन्हों होनी चाहे फोन करके इन्हों दसो, डॉक्यूमेंट भेजने तो पहले ही तुम्हें दस देंगे कि तुम कि ग्रांट से किन्ने लोन के हकदार हो, वो तो बाद तो जी करे तो तुम करवा लो, ना जी करे तो ना लो, सो थोड़े से डिपेंड करता। 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। नागपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अज के प्रोग्राम के साथ दिता सारे ने, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, गलां बातें कल नूं कहानी खूबसूरत लैके थोड़े रूबरू होवांगे। सो जेकर तुसीं लाइफ इंश्योरेंस जां फिर क्रिटिकल इंश्योरेंस जां सुपरविजरी इंश्योरेंस जां बेस्ट इंश्योरेंस की भाल दे विच हो तां वधिया सर्विसिज वधिया रेट लभ के तुहानूं लैके देणगे मुस्कान दिओल होणी। नंबर नोट करके रख लो, 647-564-2733, 647-564-2733 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 647-564-2733, 647-564-2733। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੂਡੀਓ।

0: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ। ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਟ bridgemohan.com।
1: ਗੈਟ ਰੈਡੀ GTA ਆਰ ਯੂ